Good. If you call them to join, come and join line dancing, no one wants to come. You tell them, come and join Chinese Kung Fu. So many people want to learn. So that's how I attract people. I don't just teach line dancing, I want to teach some Kung Fu as well. Down ho gaya, Krishna, kya hua aaj? गौरव कल मंडे का 4 बजे हम लोग का ट्रक को अरेंज करना है. हम लोग एक इनोवा जाएगा तो एक छोटा हाथी से थोड़ा बड़ा वाला है, लाइक ये वाला ऐसा वाला. हम लोग का पूरा टीम, आधा टीम वहाँ में जाएगा और किसी को हम का गाड़ी में बैठ जाएगा. तिरिकली बाजार, तिरिकली बाजार टूंगान चर्च का सामने.

0: ये चेंडा कतेरा कतेरा ये बेसी दाना वाला नहीं देगा, दाना वाला नहीं चाहिए। क्या बीस रुपये खाली बीस रुपये बोलो। माई डैड व्हेन ही इज ओनली 14 ही केम टू इंडिया। Hey, can I? After can I? Why? Hello. Because of the World War II, there's no way to go, and they recovered that Kolkata, India, is a very good place, and it's easy to earn living. So he came to Calcutta, and from then he stay in India. He never wants to go back to China again.
1: आप फिर आइए, हम जानता हैं आपको एक धमाल करा।
0: क्या ना हुआ, क्या ना पीसा हुआ?
1: आठ पीसा भी हुआ, हाँ
0: हुआ। बस।
1: 20 किलो आप लेते?
0: बस बस। भिंडी अच्छा नहीं लग रहा, आधा किलो भिंडी दे। खाली 20 रुपये।

अच्छा गौरव, कल मंडे का 4 बजे हम लोग का ट्रक को अरेंज करना है। हम लोग एक इनोवा जाएगा, तो एक छोटा हाथी से थोड़ा बड़ा वाला है, ये वाला ऐसा वाला। हम लोग का पूरा टीम, आधा टीम वहाँ में जाएगा और किसी को आपका साथ गाड़ी में बैठ जाएगा। ट्रिक ट्रिक बाजार, ट्रिक ट्रिक बाजार टू वन चर्च का सामने।